ये सॉन्ग को सुनकर तो मेरा दिल ही तृप्त हो गया. टुक मी बैक टू माय हाई स्कूल डेज इन सुवा फिजी. क्या टाइम था वो. चलो

नेक्स्ट गाना सुनते हैं, इनके बोल है तेरी होश में आलू तो चले जाएगा। चलो मैं नहीं गाऊंगी, पर सुनते हैं सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाज में।